क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज शिव छत्र